0: चिल्लाना तो है ही, नहीं तो कैसे है?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, कि अभी जाता है क्वेश्चन बार

ऐसे समय

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी समय अनुसार दीवार पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता। दीवार पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। बच्चों का तो बेफिक्र बच्चा का रूप देखना है, अभी इसी रूप को
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा कि सेवा वा करम और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करा वन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी
4: सबसे

अभी पूरा बंद नहीं किया। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती और आ जाती। अगर करण हार तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला डबल रूप से करावन

0: और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आता है चित्र खींचने आता है।

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। Puppy.

ऐसा तख्त तो कहां भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र ने

रचना इस फिरके के जड़ में बैठी।

See.

0: प्यारी आत्मा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप सभी अनुभवी के पाप का निस्वार्थ अविनाशी सने Sunday.

家思念，发sab kuch anubhav karna sahaj ho jata hai।

Santa.

याद करने में से

सदा सने की सागर में लौलीन रहते, सदा

равна чиста не е.

0: Raibona ne valiot. Kyo. Kisane. Me praptya. Sapasht anbhoti. Archa.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्रता की परख

Samboran Pavit.

So.

Chuck Besson.

Itchy.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा

सेवा का चमत्कार वारस निकाल सुंदर पालना चाहिए। उठाओ पान का बीरा उठाओ, दादी को कहो हम सहयोगी बनेंगे, बनाएंगे और बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। आज देखेंगे, 6 मास में देखेंगे। दादियाँ तो आ जाएंगी, पहले आप निकालो।

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से बाइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से बारिश ज्यादा निकल सकते हो नहीं है। जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना सिर्फ कांध नहीं लाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा लाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर। अच्छा कर है, क्वालिटी बहुत है। अच्छा बैठ जाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

one.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज चारों ओर के सर्व समानदारी बच्चों को देख हर्षित इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है उससे बड़ा स्वमान सारे So

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस, सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करें वो करें, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ, तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप पहले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहते हैं हंसाते है बाप दादा को, अच्छा है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता,

सोचना है बस। नहीं,

interessante. Negarelli. Se ne sentiò che

Sivaki.

Officers, attention. Controlling power. Sanskar Sabar Control Bhotwar Bab Dada Nei Kahe Rajiv जब जाओ जैसे जाओ जहां जाओ जितना समय जाओ ऐसा

0: सौरभ मेला।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Champion.

0: संकल्प। सर्वशक्तिवान बनत।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब सर्वशक्तिवान पाप साथ

0: पास भी कोई छिपा हुआ चोर की तो नहीं है, चेक कर, नहीं तो माया आई कहां से, ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो वो बड़ी खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता, तो चेक करो तो माया ने कोई चोर के गेट तो नहीं बना के रखा है, और गेट बनाती कैसे है वो मालूम है आप सोरोंगे ना तो वही माया अपना गेट बना देती। क्यों? जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर तो जाने जाने ना है, उसको पता पड़ जाते हैं गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकते हैं और मिलता भी है। चलते चलते पवित्रता के संकल्प भी आते, बोल भी होता, कर्म भी हो जाते। तो है ना गेट खुला हुआ, तभी तो माया आई। तो साथ कैसे हुआ? सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहां से आई? कहां से आई? कमजोरी रह सकती है कमजोरी? नहीं ना। तो क्यों रह जाती? पवित्रता में कोई भी विकार मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता, कई समझते हैं हमारे में तो पहनने खाने या रहने का तो ऐसा आकर्षण नहीं है, जो मिलता है जो बनता है उसमें चलते, लेकिन जैसे बढ़ती है तो माया लोभ भी रायल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रायल लोभ के हमारी मान्यता उसका पाना है। तो जहां एक विकार होता है ना, वहां उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और ईंट को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय पर मान अपना चांस लेते हैं। पहली अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ, माया जोर गेट से आ गई, ये पता ये नहीं को पता नहीं क्या।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भवक के वरदानी बने। सुनाया दादा कि कई बच्चे सोचते हैं हम विजयी तो बने लेकिन माला तो 108 की है, तो विजयी बन के माला में तो आ नहीं सके। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजयी बनाओ बनो तो बाप दादा माला में भी लड़े लगा देगा। सिर्फ विजयी बनो, तो क्या संकल्प है? विजयी बनना ही है ना कि सिर्फ 108 विजयी बनेंगे? बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक, क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिया। Last one.

0: प्राप्त करती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होती है ना, वो ऐसे होती है जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रही है लेकिन गायब, बोल भी रही है लेकिन गायब रूप में बोल रही है, वो चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, सीरियस नहीं चेहरा करना, क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो, लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा है मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना, आता है। आपके चलचित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा सा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: करना महसूस भी किया।
2: परिवर्तित हो
1: शीतल सुनाई अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से क्या है गैस का गुब्बारा बढ़ जाता है और आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा, फटेगा ना तो सच्ची दिल। चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म साता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सच्चे दिल से छोटी बातें बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं सच्ची।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के लोग

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध कार्ड, उसको यूज कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज वही चीज हो गई ना। चलेंगे ना, कॉलेज चलाते भी हैं।

掃除しちゃった。アプトチョパープケーソンスカーウォーアプケーソン

0: Sabine.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस एक ही संकल्प में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बदल जाती है।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जो चाहोगे चाहे वीडियो चाहो उसमें टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत बिना बिना पोस बदलते रहते, बात देखते रहते हैं, सोचते हैं शरीर ही बदलेंगे, फिर सोचते हैं शरीर ही माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हुई नहीं, आत्मा ही हूं मैं। आई आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी सोच में अशरीरी या अशरीरी बन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अखनों की, दूसरे इस भ्रष्टाचार अत्याचार

एक तरफ अगन अगन को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की शीतल भी करेंगे, भेद के फैरा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Let's see.

Tiens.

Aquí.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा, ब्रह्मांड जीवन अर्थात बाबा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम
1: सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज शिवरात्रि पर हर एक

kesempuran Raj Mejane. Apa nih?

家店呢，叫个阿伯，阿伯那边不奈我不接，那边的阿伯是大爷，阿伯。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो कुछ हुआ तो बाप दादा छत्र छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए, एक ब्रह्मा कुमारिया अटल रही, तो प्रैक्टिकल में बेघरी लाइफ भी देखी, तपस्या सबसे

0: noi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सभी बच्चों को, सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहिए, क्यों जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से

संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़ी समय के लिए परिवर्तन कर सकते। इस सेवा के विस्तार में सेवा के विस्तार के समान संपर्क में आना मर्ज हो गए, खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गए। आत्मक स्व

क्योंकि आप सभी

श्रेष्ठात्मा देवात्माओं के सबसे

você. Saman sambarak meu. See beyond.

सबसे सहज पुरुषार्थ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द है, बोलो कौन सा होगा? दो शब्द और है भी इंग्लिश कंपेनियन और कंपनी, पसंद है डबल फॉरेनर्स पसंद है ये दोनों। एक हाथ उठाओ अगर पसंद है तो, एक हाथ उठाओ। अच्छा, भारत वालों को पसंद है, पसंद है, पसंद। पीछे वालों को पसंद है, पसंद है। अच्छा, कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। सबको क्या मिला?

सभी बच्चों को रिवाइज करा रही है। किस्सा

observa essa mania. Jesus.

Fresse. Samantha. Cardiomyopathy.

Some.

सत्य की तरफ मन और बुद्धि

कोई समय

Nossa. Vidas. Yeah.

Flyer dran.

Sa

Видео.

见。

0: parece para papá.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा था, तो अब बनना, उसकी डेट भी फिक्स करो, कितना समय लगेगा जो ब्राह्मण परिवार में कहां भी कभी भी संस्कार अपन उत्साह है, तब तो आ तो रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और जाए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सके। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फ्रिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना है। और अचानक होना है, इसका अभ्यास अगर सेवा भी की लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा कि अचानक होना है और ऐसी सरकमटेंस में होना है, इसीलिए बाप को लेना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे दे रहे, सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी लेकिन और तीन सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और तीन में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा। चार ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए, ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आश।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खांसी के लिए
2: दादी गए थे बगीचे में, दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने दृष्टि ज्ञान दिया था, अभी पक्का हो गया।
1: गुलजार दादी गई थी इनो की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
3: ये तो कल पहले नौका भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखते हैं ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा। ये तो शब्द हर कार्य में यूज करो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो निमित्त है

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी

0: शरद हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी शरद पे आगे बढ़ो, वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के चलो उमंग उल्लास अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोगी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्थिति
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो, जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ, ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुत्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ, ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं, तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Meine

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई आपसे

0: esa anu pokareona api janteu or apkoi isbiarka anbawe ke hamare dilme paprete
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना, देना आता है ना, लेना तो आता है लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या, देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीवर करना। जो भी आए मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना, तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप की मदद का है ये अनुभव कर।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो,
3: सोचते हो,
4: सोचते हो,
1: खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा यही चाहते हैं। के हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी never।

Robes.

सर्व शक्तियों का वरदान दिए, सर्व गुणों का खजाना दिए। खजाने को यूज करने से खजाना पड़ता है, खजाना है सबके पास है। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा बन जाते हैं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

7.

किसी सिस्टम में।

carnival. Carnival.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज चलाना है या मारा हुआ ठीक है, चलाने की शक्ति है शक्ति उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो, किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई। और उस सरकमटेंस के ऊपर मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को संस्कार को समाप्त करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और स्वउन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वउन्नति में अंतर आ गया। ये नहीं कहना, दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों, दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

sais

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sí.

0: करा वरना हार करा रहा है। मैं निमित करनहार हूं। इस स्मृति से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जगे हुए दीपक के सामने आ

ऐसा समय

0: he assisted me. Pahunchiye.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी कहते तो है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जब दिल से सदा कहते हैं

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैं ये कर सकता, अभिमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो

तो खुद नहीं बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी की।

0: महीन में बन, यही बाप कहते हैं। आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी पाप की देन, तो अविनाशी पाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आराम का अर्थ है आराम फिर करना। आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वो आराम नहीं करना धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहिए। अगर कभी कभी वाले भी है तो बहुत सहज भी थी। Oh,

بدن له یہ حد کے میرے بن مشکل ہے کیا؟

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 वाइट 10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं कि 24 वारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रेल की के 10 मिनट स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता। जिसको हो सकता है वो करें, अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट 6 मिनट जितना भी बढ़ा सको उतने ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहे हैं इसमें ऐसी बात नहीं है, अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतने आदत डालो, क्योंकि अभी

0: शरदका जो प्राप्ति है आधा कलम की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाए। अगर अभी कम समय देंगे जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी, से ज्यादा नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किराए देने पड़ेंगे। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं जितना समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

बच्चे।

0: बनेंगे, कौन बनेगा? अच्छा अच्छा, ओ बाप दादा, माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? पसंद है? विजय माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजय माला।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है, लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना। कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान के सीट स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो, और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के माफक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। पता है क्या देखा? कभी किस बात

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मध्य सोगति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए

0: stop. सीकर में लगाने का बार बार अभ्यास करो, अभी फास्ट तीव्र प्रशरत करो, अभी ढीला ढाला प्रशरत सफलता नहीं दिला सके।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सदा हर बच्चों को।

0: फिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दादी कहती थी मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। क्या चाहती हूँ? एक एक मधुबन वासी पाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वाले को दादी से प्यार था, ये दादी कहती थी मुझे पता है। तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, पापा ने कहा मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जानते ही है। ऐसे ही अमृत वेले से लेके रात तक हर एक मधुबन वाले अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो हमसे अगर दादियों से प्यार है तो यही करके दिखाए, सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल गर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा की आवश्यकता है जो चेहरी से नैनों से दो शब्द से कोई

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

तेरे बाप दादा सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं। सुंदर दृश्य आप

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh, shit।

Freddy. A baby. Dikhai denge. Sabke sansar sanskar. Abhi sampan nahi hue. मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Okay.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Sorry.

você.

0: शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगा।

दूसरे की तरफ सीधे देखते हैं। आप लोग बताते हो ना ऐसे करते हैं, बताते हो ना, तो एक अंगुली दूसरे तरफ, चार अपने तरफ है, तो चार

0: परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदले करे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मधुबन मधुबनी विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनना बाजी, ये नहीं है लंदन में बोली बाजी।

Sternen.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Ne, ne, ne, ne.

अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे Yeah.

Chick.

Rodney.

Yeah.

man.

ऐसे समय

0: आवश्यक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Let's see.

Kızım.

push

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

世界了。

लग जाए ये एक्सरसाइज करो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: I should.

0: Okay, Carlico. La piccata nelegna. Jewa, jewa. Sneyeka. Osneyeka. Yera mera orun kikate. Kian markka.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी है कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते, और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वो आगे निकल भी सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एक सैंपल के रूप में है। बस जमा करते जाओ, कट नहीं करो जमा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। कोई कितना भी हिलाए आपके दृढ़ता को, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसंद, इसको कहा जाता है योग। अगर निशान समापन मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, बस होने के बाद नाम निशान कदम, तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान आर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं बोलता है, बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं बोलते, क्योंकि सिक्की लदे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने आपको ढूंढा, आप बाप को ढूंढ सके भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने साथ देखी न देश देखा न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं, साथ देखी बाप ने काला है गोरा है, शाम है सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है ये देखा। तुम बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है, दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है, कहती है बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। होशियार है बच्चे भी, और बाप को खुशी है रखने वाले बच्चे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रतिज्ञा, चाहते जैसे वाणी द्वारा भी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिक्कियां बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्कियां देने में एक दो को भी समोचार, लेकिन कि मैं के साथ सिक्कियां दो। मुरली सुनाने कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो भले सिक्कियां दो, लेकिन आपस सिक्कियां दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे का कमजोरी की किमिया हो जाएगी। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सारे कलब में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का
2: जन्म भी

परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार साथी बनने का प्यार इस संगम बड़ी अनुभव करते बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो अकेले या साथ में हर एक बच्चा मग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के कंबाइंड कंबाइंड रहते हो ना, साथ जना

0: कोई और पाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है, और साथ ही चलने वाले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जब मेहनत है वहाँ मोहब्बत।

upset.

0: बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, और हर कलम हम ही होंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि फर्क

Tchau.

upset.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे शरों द्वारा वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक दिन में कितना भी बड़े दिन बना मुश्किल है नहीं ना कि बिंदी श्रम पे तेल लगाते जाओ, यही सिखाया सबसे सहज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

संबंध देके पदार्थ देके संस्कार दे शब्द सुप्यात और विषय

me.

inne hier liegen. Kapi kapi Nikolade. Kyo Nikolade?

कि जैसे सर्विस के फलक झलक आप लोगों को दिखाई देती है और बहुत सेवा का ऐसे बेहद के फैराग वृद्धि का प्रभाव क्यों कर आजकल सेवा द्वारा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है। और उसके साथ साथ कोई एक भिन्न-भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ तो विशेष अटेंशन हो जाएगा किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो

0: रोज चेकिंग करेंगे ना रिजल्ट, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहते हैं कि संस्कार के सब्जेक्ट नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे। हो जाएगा, अटेंशन में आए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेफिक्र बच्चे,
2: बेफिक्र
1: बाप दादा,
2: बाप दादा
1: सदा ही बेफिक्र बच्चे।
3: बेफिक्र बैठ,
1: कारण क्या है? बेफिक्र क्यों है?
2: कल क्या है, ये फिक्र क्यों है?
3: दिल बड़ी है। बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है।
1: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता
3: है। तो दिल बड़ी कैसे हुई है?
4: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। सदी सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सदी याद में लव सीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई बुशारत नहीं कर सनील के सागर में समा जाओ। कभी कभी बच्चे

सनी सागर में समाती है, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल के आती। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते। बस अब थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल। समाते रहो सनी की शक्ति, सबसे सहज मुक्त कर देगी सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आद का अनुभव सनी ने ब्राह्मण बनाया। सनी ने परिवर्तन किया, अपने जन्म के आद का समय अनुभव याद है ना, ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन सनी ने

0: Satan. शनि की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है शनि में समाया हुआ है। शनि का अनुभव सभी को है ना कि नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप से बाप दादा सिस्टर ने सबसे ज्यादा किसका है, सभी हाथ उठाएंगे मेरा है, ऐसे ना है ना है। पीछे वालों का भी है हाथ उठा रहे, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं है सबका। तो बाप दादा आज यही कहते हैं शनि की शक्ति सदा कार्य में लगाओ, सहजना योग लगाते हो भूल जाए, देखी दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब शनि की चंद्र छाया में रहेंगे, शनि की चंद्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। शनि की साखट से बाहर आते हो ना तो माया लेती है और अपना बना देती है, निकलो ही नहीं, समाए रहो। शनि ही कोई भी कार्य करते हुए शनि को नहीं भूल सकता, शनि में खोया हुआ हर कार्य करता। जैसे आज के दिन कोई नहीं, ऐसे सदा शनि में नहीं रह सकते हो क्या?
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

नोट करना, सुबह को उठते चेक करो, सब

che ci trome. Sada. Travel touches. Tua por me. Kai raje.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संबंध नहीं बन सके।

0: भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो तो रचता का इंतजार रचना करे न कर। मास्टर रचता समय का इंतजार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा यही हर बच्चे से चाहता है।

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। Baby.

fast then. Yeah, he did it.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपने चेकिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसे आती है जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल लेते। और बाप दादा एक

ऐसे बाप दादा ने देखा है, कि कई बच्चे लक्ष्य अपने

of absurd.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंदा हुआ है देने के लिए। छत्तीस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाए, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? रहता है। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक मिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सबकी दादी निमित्त बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित्त पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखाए। सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया, ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही, और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेलाया छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
2: भाइयों को बुला रहे
1: हैं। दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान वासना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन, ऐसा वर्तक के स्वरूप देख, फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

creepy dulce de

अच्छा।

Yoga Pop Dada. बच्चों का ऐसा वैसा चेहरा देखने नहीं चाहिए, कुछ

しよう。

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे, फेस में
2: सबको। बाप दादा तो बहुत बहुत
1: अच्छा।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वर्तमान समय और

fin.

ist halt

Papa.

Rita.

Isso.

Ищи.

Restartat. It's a day.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।